जन नानक ऐसा हर सेवया अंत लय चढ़ाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न हुई। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न हुई। बलिहारी

अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालेओ, जिन कीती सो पार पया।

गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़ नरखीश्वर।

विचारा शिफ्ति भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सुवार नहारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं, आखन औखा साचा नाओ। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिय दुख।

राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई।

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै तृप्ता सह मिल।

सतगुर शरण संगत नहीं आए। त्रिग जीवे त्रिग जीवासु जिन हर जन सतगुर संगत पाई। तिन तुर मस्तक लिखिया लिखासु धन धन सत संगत जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जीव परया। शैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक सुंबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया। ऊडे ऊडा वै सह कोसा तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा।

न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरन जाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ, जब तब संयम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया।

सहाय, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सुवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद, कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी, कर मैं न कहूँ, सब तो हे बखान्यो। दो हरा

पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाऊ नित्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाऊ सतगुर सेती रत्या दरगह पाई ठाऊ कहो नानक कृपा करे जिसनु एह वत दे जग मह उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

एहु नानक जिन कौ नदर करे ता एहु धन पल्लै पाए। ज्ञानिया का धन नाम है,

खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर भव शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख उठ वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो विनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। इहां खाट चलो हर लाह आगे बसन सुहेला। औद कटै दिन सो रहनारे मन गुरमिर काज सुवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पिया वह एहो रस कथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहा जो हर गुर ते मने बसेरा।

मेरा। बोलो जी, बोलो जी। अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जे जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दर जी का ध्यान रखे खालसा जी। बोलो जी। निमाणियां दे मान मिताणियां दे तां नियोटियां दी ओट गुरु गरीब निवाज धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सच्चे पातशाह जी महाराज जी अमृत वेले तो आप जिया ने खुले दर्शन दे दर दे के निहाल कीता है चार पहर दिन सुखां दा आप जी दे पाणी बतीत होया महाराज जी आप जी दे पाणी अंदर बतीत होया गुरु गरीब नवाज रहण आई है सुखमई बतीत करा महाराज जी रात दे दीवाना दी संपूर्णता आप जी दी सेवा संभाल सोहला साहब जी दी बाणी दा जाप कीता गया गुरु गरीब नवाज सेवकां पासों बेंत भुलां हो जांदियां ने बख्श लैणा बेंत संगतां तन मन धन करके हाजरियां भर रहीआं ने सब दी हाजरी कबूल करना महाराज जी सेवादार हाजर ने निज स्थान सचखंड पलंग ते विराजमान होवो अमृत वेले फिर दर्शन बख्शना सुख होवे नाम चितावे नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सर्व सुख पाव है मेरे मना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराजियां दी पावन हजूरी दे विच अमृत वेले हाजरियां भर रही गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी सारे ही संगता दे योग हो। सतगुरु जी ने कृपा कीती है, अमृत वेले दियां हाजरियां बख्शिश कीतियां। सतगुरु जी ने पावन तख्तां ते प्रकाश मन हो करके जो हुक्मनामे दियां दातां बख्शिश कीतियां ने, राग तनासरी दे विच चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी दी पावन रसना तों उच्चारण कीता होया ए पावन शब्द। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन अंग 669 और 617 दे उते सुभाए मान है जी। सतगुरु जी रहमत करन, इना पावन हुक्मां अनुसार सानू सारयां नू ही जीवन जाच बख्शदे होए इस जीवन नू सफलिया कर देण, ता जो लोक सुखी परलोक भी सुहेला हो सके। सतगुरु जी रहमत करन सभना जीआं दीआं हाजरियां प्रवान करन, अपने पावन चरण कमलां दे नाल जोड़ के इस तरह सतगुरु जी इस जीवन नू सफलिया कर देण। हुण समां होया है, सब तो पहला संपूर्ण श्री सुखमणी साहिब जी दे पाठ होणगे, उस तो उपरंत नितनेम दीआं पंजां बाणियां दे पाठ होणगे। सतगुरु जी रहमत करके शुद्ध बाणी एकाग्रता सहित पै भावनी सहित पढ़न की दात बख्शिश करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की

सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट न आवत काल। अमर भये अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया। श्लोक

अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमोलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत होत उधार, आप तरह दुख है निस्तार।

सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उदरे तिनके साथे प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पहे सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहु संत मी।

दाता की पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर तन खाट चलाए जन सोए, नानक जिस है प्राप्त होए। खेम शांत रिद नवनिद, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध, विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास।

सुखमनी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई, गोरी सर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई, गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, तीर्थ नावा जेत सुपावा विण पाने के नाए करी, जेती सिर ठोपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई, मत विचरत न जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी, गुराय

आवे कह रंग उन्नी पापी आखण नाही कर कर करना लिख ले जाहु आपे बीज आपे ही खाहु नानक हुक्मी आव जाहु तीर्थ तप दया दत दान जेको पावे तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाहु अंतरगत तीर्थ मल नाहु सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी परमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति माहु कवन जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जी हुए लेख पुराण

जाना सोई क्यों करे आखा क्यों सलाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखन सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुए नानक जी को आपो जाने गह गया न सू है पाताला पाता लक आगासा आगास कोड़ कोड़ पाल थके वेद कहनिक वात सहस अठारह कहनक ते बासलू एक तात लिखा हुए ता लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जान है आप सालाही ती सुरत न पाइया नदियां अतै वाह पवह समुद न जानिए समुद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुलना हुवनी जे तिस मनु न विसरह अंत न सिफती कह न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण कीते बिललाहे ताके अंत न पाए जाहे उ अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता हुए।

कौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गाव है चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद्रासन बैठे देव त्यादर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले गावन रत्नो पाए तेरे अरसर तीर्थ नाले गावह जोत महाबल सूरा गावह काणी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे शीत दनु गावह जोत पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चितनाव नानक विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै की तापना जिव तिष्टि वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पा झोली ध्यान की करह विभूत खिंता काल कुआरी काया जूत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत है जगजीत आदेश से आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एक वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाथ आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिदवरा साध संजोग जोग दुकार चला वह लिखे आ वह भाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को वेश एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चला वह जिहो वह फुरमान ओ वेखै ओ ना नजर न आवै बहुताय हो विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सुचे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बाओ लख हो हे लख हो वै लख वीश लख लख गेड़ा याकी है एक नाम जगदीश एक राय पत पवड़ियां चढ़िया हुए इकीस

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿਨ ਸਕਤ ਕੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਬਰ ਕਾਸਮ ਤੋਜ ਕਹੀ ਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹਿ ਸਾਹਾਨ ਗਨੀ ਜੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ। ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਢਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਧੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਧੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਏਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਘਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਮੇ, ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸ਼ਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸ਼ਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤਜਬੇ, ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਗੌਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਬਰਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੋਕੰ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੋਕੰ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਧੇ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਧ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਭੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਜੰਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਭਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰੇਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਵ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਤੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਤੇ ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸੁਮ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸੁਮ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ
नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता पेखीय परमीय भोगीय भुगते नमो जुग जुगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रे देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहसांग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग सुनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानं सर्वं परनाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद कर्ता अदो उर्ध अर्धं अगंग ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अचेदीय पेदीयानामंगकामं समस्तोपराजी समस्तस्ततामं तेरा जो चाचरी चंद जले है तले है पीत है अभी है प्रभु है अजू है अदेश है अपीश है भुजंग प्या छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमस्तुंग जननाथे नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सदा सर्वदारिद्र सिद्धंग निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मी अमृत धर्मी अकल जोगी अचल भोगी अचल राजी अटल साजी अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआ चंत्व प्रसाद आद रूपनाद मूर्त जौनपुर कपार सर्वान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्वपाल सर्व काल सर्व कूपन काल जतर ततर विराज अवतूत रूप विशाल नाम थाम न जा जाक रूप रंग नरेक आद पुरखदार मूर्त जौन आद शेख दिशोर न पेश जाक रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हो फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेखता मुह न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत को फिर एक दे पे न जाने ही जे भेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानी के जे तात मात न जा चक्र जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरती लोक चौदह के बिखै जग जा पीजे जा पा देवनाद मूरत था प्यो सबै जी था परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचे सोयम भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अभे संग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुख दाय काम आप रूपमी कनुष्ट देख प्रकृतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग नात्मेक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वचित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार असन पांग उपमा नंगन पौ प्रकाश निष्ठिन अनास आजान बाहु साहन साहु राजन राज पानन पान देवन देव मा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान कालन भूतांगा बापांगत मित अपार गुणगन उदार गुणगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड वालिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ्य अंडन भाड्य चाचरी छंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे
हरियं करियं निर्णामेय कामे पुजं प्रयाचन चतुर्चक्रहर्ता चतुर्चक्र दाने चतुर्चक्र जाने चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्र परती चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र काले चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे चतुर्चक्र मान्य चतुर्चक्र दाने चाचरी चंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय जन्मंग जाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रति सदिश दृश्य कृश्य भगवती छन्त्व प्रसाद कथते किया चिज देश किया भिज पिस किया गंज कर मैं किया पंज कर मैं किया भिज लुक है किया दित सुख है के भूत भरने के विभूत करने के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक भरने के सर्वा अपर्ण कि जगतंग कृति है कि छत्रंग क्षत्रिय के भरमंग स्वरूप है के अनुपाऊ अनुप है के आद देव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीन है कि कह अधीन है कि रोजी रजा कह रहीम में रिहा के पाक वैब है कि गैबुल गैब है के फुल गुनाह है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राज करीम है कि कर्म करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र धान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पिश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पिश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंथा के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है कि सर्वंग कली में कि परमंग फहीम में कि आकुल अलाम में कि साहिब कलाम में कि हुस्नल वजू है तुमामुल रजू है हमेशल सलाम में सलीखत मुदाम में गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तुमाम में रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम में रजाय की यकीन है नेकुल तुरंग है अपीद है अपंग है अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुक्त प्रभा हैं सुयुक्त सुधा हैं सदैव स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तु पराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैव अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओंगाद रूप हैं अनाध स्वरूप हैं अनंगी अनाम्य त्रिभंगी त्रिकाम्य त्रिभर्गं त्रिपाते अगंजी अगाते शुभंग सर्वभागी सुसर्वानुरागी त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है कि नरकंग प्रनाश है पृथुल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद भंग है अनंग है अपेख है अलेख है भरम है कर्म है अनाद है जुगाद है जय है अभय है भूत है तूत है अनाश है उदास है धंध है बंध है भक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है लिखे देखे लिखे पेखे अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है आजाद है चरपट छंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग अंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राणु सर्वंग त्राणु सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंग

सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं सरी कै मितो अमी कै सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद इजाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हम इसल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी दयांद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनी मह रजायक रही मैं समस्तुल जुबा है कि साहिब किराए कि नरकं प्रनाश है बहस्तुल निवास है कि सर्वल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदेशल आलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जुमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि सुरत जुमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनांग है कि मितो अपंग है मदपार छंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरवर अगंज हर नर परपंच अनुगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड पर नर अमंड अन पवनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचे जीव अंग आसन भांग उपमा पार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विश अपांडो जल थल महंत दिस विश बेअंत अनपवनास त्रितर तुरास आजान बाहु एक सुदाहु ओंकाराद कथनीय नाद कालखंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनचिज गात अज जना बात अनचंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अन डट अपार आडीठ धर्म अत ठीठ करम अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतवा प्रसाद करुणालय है हर काल्य है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरने जग के करने मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है थपा तप है कृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत्य है मृता मृत्य है जब्बा कृत्य है मृता मृत्य है नरनायक है कलकायक है विश्वम पर है करुणालय है निर्पनायक है सर्पायक है भाव भंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वा कृत्य है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग छंद नमो सूर्य सूर्य।

ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिय नादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वासासे नमो बांक बंके भंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चांदा जय अलय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश गंज पांच लख पक अकाल दयाल अलेख भेख नाम काम गाह अटाह नाथे परमाथे अजोनी अमोनी नरागि नरंगे नरूपे नरेखे करमंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय विघ्नी में हरियंग करियंग करिमुल रहीम में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते तु कालं परनासी दयालं स्वरूपे।

सगल द्वार को छाट के गयो तुहारु द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद को अंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सिद्धि, मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईया, शब्दों ता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना, सबना गल्लां समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, करता तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे, सदा सुख सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कह मन वसियावा, जे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर सांत सुख मने आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टा हो जिस दिया ए वडे आईया। कह नानक सुनो संतो सब धरु प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजीपन सब तित घर सुभागे, घर सुभागे सब दुवाजे, कला जित कर धारिया, पंच दुत वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुत जिन को से नाम हर कह लागे, कह नानक शब्द लाग सुवारिया। कह नानक लिवै बाजो क्या करे वेचारिया, आनंद आनंद सबको कह आनंद गुरु ते जानिया। जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलवे कट्टे ज्ञान अंजन सारे, अंदरो जिनका मुँह टुटा तिनका सब सच्चा सुवारिया। कह नानक क्यों आनंद है आनंद गुरु ते जानिया, बाबा जिस तू दे सोई जन पावै, पावै ता सो जन दे जिसनों होर क्या करे विचारिया। एक भरम भूले फिरह दाह दिसक नाम लाग सुवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे। कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे, आवो संत प्यारे हो कथ की करे कहानी कथ केरी, कित द्वारे पाईए तन मन तन सब सौप गुरु को, हुक्म मन्ने पाईए हुक्म मन्ने हो गुरु के रागा, वो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संतो कथे हो अकथ कहानी, मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरे आए। माया मोहनी जिनेच भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया। कुरबान कीता तिसे कुरबान कीता तिसे विट्टो, जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया, मन प्यारिया तू सदा सत संभाले, कुटम तू जे देखदा चलै नाई तेरे नाले, साथ तेरे चले नाई तिस नाल क्यों चितलाई, ऐसा कमूले न किचै जितंत पछोताई। सतगुरु का उपदेश सुन तू हुवे तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सत संभाले, गम गुचरा तिरंत न पाया, तू न पाया किने तेरा, अपना तू जा नहीं जी जन सब खेल तेरा। क्या को आख वखाने कहता वे कह सब तू है जिन जग तू पाया, कह नानक तू सदा गम में तिरंत न पाया। सुर नर मुंजन अमृत कोश दे सुमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, जी जन सब तुद उपायक वेख प्रसन्न आया। लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया, कह नान जिसनु आप टुटा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी, बिख मार्ग चलना कन्ने लभ लोभ अहंकार था तृष्णा बहुत ना ही बोलना। कन्ने हो तिखी वालों ने केत मार्ग जाना, गुर प्रसाद जिनी आप तजे हर वासना समानी। कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली, ज्यों तू चलाहे तिव चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाहे तिवै चलै जिन्ना मार्ग पावहे। कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावे, जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारा सुख पावहे। कह नानक सच्चे साहिब
ज्यों भावै तिवै चलावहि। सोहिला सुख सुहावा, सबदो सुहावा, सदा सोहिला सतगुरु सुनाया। यो तिन कै मन वसिया, जिन धुरो लिखिया आया। एक फिरै कनेरे करै गल्लां, गल्ली किने न पाया। कहना शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया। पोइत होए से जना जिनी हर ध्याया, हर ध्याया पोइत होए गुरमुख जिनी ध्याया। पोइत माता पिता कुटुंब सह सियो, पवित संग सबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कह नान से पवित जिनी गुरमुख हर हर ध्याया। करमी सहज नोप जैविन सहज, जै सहसा न जाए न जाए। सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए। सहसा जीव मलीन है कि संयम धोता जाए। मन धो शब्द लागू हर सुन रहो चित लाए। कह नान गुर प्रसादी सहज उपजय सहसा इव जाए। जी हो मैले बारू निर्मल, बारू निर्मल जी हो ता मैले। तिनी जन्म जुआ हारिया, तिसना वड्डा रोग लगा। मरण मनु विसारिया, वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही। फिर है जो बेता लिया, कह नानक जिन सत जिया कूड़े लागे। तिनी जन्म जुआ हारिया, जी हो निर्मल बारू निर्मल, बारू ता निर्मल जी हो निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ के सोय पहुंचे नाही। मन सा सत्समानी, जन्म रतन जिनी कटिया भले से बन जा रे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु से ती सन्मुख होवै, हुवै ता सन्मुख सिख कोई। जी हो रहे गुरु नाले, गुर के चरण हृदय ते आए। अंतरात्मा समाले, आप छड़ सदा रह परण। गुर बिना वर न जाने कोई। कह नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होए। जे को गुर ते विमुख होवै, बिन सतगुरु मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होर ते कोई, पुछो विवेकिया जाए। अनेक जुनी भरम आवै, बिन सतगुरु मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु सब सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुरु मुक्त न पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै, हृदय तिना समाणी। पीओ अमृत सदा रहो, हर रंग जप्यो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची। सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना, कहा कछु न जानी। चित जिन का हिर लिया माया, बोलन पैरवाणी। कह नान सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुरु का शब्द रतन है हीरे जित चढ़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, एहो हुआ समाओ। सब छेती मन मिलिया, सच्चै लाया भाव। आपे हीरा रतन आपे, जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव सकता पुपाए, कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आवे कह गुरमुख सह बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुख शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै, किस्यों लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमर शास्त्र पुन पा विचार दे, तत्तै सार न जानी। तत्तै सार न जानी गुरु बाजू, तत्तै सार न जानी ते गुणी। संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी। गुर कृपा ते से जिन जागे, जिन हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी। कह नानक सो तत् पाए, जिसनु मन दिन हर लिव लागे। जागत रहन विहानी, माता के उतर में प्रतपाल करे। सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है। वड दाता जे अगर मैं हार पहुंचावे, उसनु क्यों पोहे न सकी। जिसनु अपनी लिव लावे, अपने लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभाली है, कह नानक वड दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया गुण सबिको जेही। करतै केल रचाया, जा तिस भाणा ता जमिया। परवार भला पाया, लिव छुटकी लगी तृष्णा। माया मरवरताया, माया जितर विसरै। मुख जय भाउ दूजा लाया, कह नान गुर प्रसादी। जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया। हराप मुल कै मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए। किसै विट्टा हो रहे लोक विल लाया। सत सतगुर जे मिलै, तिसनु सिर सौपिए विचु हो आप जाए। जिसता जियो तिस मिल रहे, हर वसै मन आए। हराप मुल कह भाग तिना के नानका, जिन हर पल लै पाए। हरास मेरी मन मन जारा, हरास मेरी मन मन जारा। सतगुर तेरा सजानी। हर हर नित जपे हो, जी हो लाह खटे हो दिहाड़ी। यो धन तिना मिलया, जिन हर आपे भाणा। कह नानक रास मेरी मन हुआ बनजारा। हे रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कितै, जिचर हर रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै पीए, हर रस बौड़ न तिस न लागै आए। एहो हर रस करम ही पाई, सतगुर मिले जिस आए।
कह नानक होरन रसा विसरे जा हर वसै मन आई श्री राम मेरे यार तुम मैं जोत रखीता तू जग मैं आया हर जोत रखी तुद विच तू जग मैं आया हर आपे माता आपे पिता जिन जी उपाय जग दिखाया गुरु प्रसादी बुझिया तन चलत हुआ चलत नदरी आया कह नान सृष्ट का मूड रचिया जोत रखी तू जग मैं आया मन चाओ भया।

फिर जापे। अनहत बाणी गुरु शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभा मिलिया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरे इस जग में आए कह, क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक यो शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर से चित लाया। हे नित्र हो मेरे हो, हर तुम मैं जो तरी, हर बिनवर न देखो कोई, हर बिनवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। यो भी संसार तुम देख देव, हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुरु प्रसादी बुझिया जावे का, हर एक है हर बिनवर न कोई, कह नानके नितरंद से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई। हे श्रवण हो मेरे हो, सच है सुन नैनो पठाए, सच है सुन नैनो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। जिस सुनी मंथन हरिया हुआ, रसना रसमानी, सचल कविडानी, ताकि गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो, सच है सुन नैनो पठाए, हर जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पाओ नौ द्वारे, प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरु द्वारे लाए भावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाउ नव निध तिष्टांत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन बजाया, एहो साचा सोहिला साचे कर गावहु, गावहु ता सोहिला कर साचे, जिते सदा सच त्यावहे, सचो त्यावहे जा तुद पावे, गुरमुख जिना बुझावहे। इहो सत सबना का खसमै, जिस बख्शे सो जन पावहे। कह नानक सच सोहिला साचे कर गावहे।

बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखहु राखनहार दयाला, नानक करके गुले।

हालत पालत मुख उजल हुई है। नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ, जह हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी। वड भागी

हालेलुया। अंतरजा में सतगुरु जी आप जी दर की हाजिरी पढ़द्या बेअंत कुर्सी कमाई पाई लो आप जी मन के सत्कार जो बेअंत माया बेटा पढ़द आप जी सारे सिखी दान भरोसा दान चरना कमना प्यार बख्शना खजाने प्रपुर कने सुख पाओ गुरु प्यारी सत्संग जी कीर्तन की इनक सेवा प्रवानकनी हुई भुला चुका की खिमक ने अगले प्रोग्राम सरवण करिए सत्कार योग भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी और उन्होंने पासो अज दे श्री मुखाक के विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करिए दस वालों फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सत्संग जी। बोलो जी, वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे, गुरु नानक लई प्याय। पहले अंकित गुरते अमरदास रामदास जी हुए सहाय। अर्जुन हर गोविंद सिमर श्री हर राय, श्री हर कृष्ण की आई से सब दुख जाए। ते बहादुर सिमर है कारण होने दे आवत आए, सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब थाई हुए सहाय, दसा पाची के पुत्र आत्मिक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार अंतर के खल सत। बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चारे मुक्त हटिया जपियां टपियां जिन्हें नाम जपया वंड छकया देख चलाई तेग वाही देख डेट किया देना प्यारे से त्यारे ने कमाई दते अंतर की। बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणियां धर्म हे सी दिते, बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाइया चरखड़ियां ते चढ़े आर नजराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं आ रहा सी किसे ते कैसा सरसा सिंह आया ते नानी कमाई दते अंतर की। बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्तां गुरुद्वार दते अंतर की। बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम जिता है चित आमण का सदका सर्व सिखो है। जहां जहां गुरु खालसा जी साहब तक चरियाए देख देख की फतेह बिरत की पहल पंथ की जी श्री साहब जी से आए खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बुंगे जुग जुग टल धर्म क्या जयकार। बोलो जी वाहे गुरु। सिखा का मन नीवा मत दी मत पत के रखे आप वाहे गुरु। गुरु जी महाराज पंथ सदा सहायता दया दियो गुरुद्वारा निरकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जो पंथ में छोड़िया गया दर्शन दान सेवा संभाल दान अपने खालसा जी बख्शो। ये नोटिया की ओट गुरु न्यासलिया न्यासले गुरु धन धन गुरु ग्रंथ तार पिता जी हो दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे धान रास। ये गरीब नवाज जी आप जी के चरण कामना अरदास इंतजार जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश मानो संगत को दर्शन दर दे हर कृतार जी हो बेहद बाणिया के पाठ अज मैं रागी सिंह ने आप जाना जा सकू आदि कीर्तन कीते विद्वान भीर ने अज के हुक्मनामे ने कथा प्यार की कृपा करो भूइया भुलन चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदान की बात करो जी अगो तो शो से पित्र बाणी प्याने मन बुद्धि बख्शिश करो आज इस खुशी में आप दिया बख्शिया दरता पित्र कड़ाप शादी दे तैयार करके हाल दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संघ की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पित्र नाम जप बख्शिश करो दता दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी जीवन आज आप दिया बख्शिया दातों जो नगर तुर सवार प्रबंध करनी तथा आप दे चरणा सेवा कर रहे सारे तरह दिया सिंघा सिंघणिया तंदुरुस्ती बख्शो शादी कला बख्शो सदा इसे तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शिया की बात करो गरीब नवाज अमृत वे तो लैके दाते आई है सब संगत की हाजरी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगत का दर देते फुल पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी जीवन गरीब नवाज कृपा करो सिख कौ खालसा पंथ न एकता स्वाग प्यार की बख्शी करके सचन तोग की दाज बख्शो चानना जोड़ो गुरबाणी ने प्यार बख्शे हर मैदान जवान फते बख्शा की बात करो जी गरीब नवाज कृपा करो दूर दुराधे घर बैठिया लाइव कथा की सरवण कर रही सारी संगत की हाजरी प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ तारा ने कृपा की है संगत ने उदम बख्शे संगत आप जाना धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा सिंह संगत माया पेटा घर ही चरना प्रवान करो बख्शी कर सब कमाइया सबल करो कार्य वार सब संगत शुभकामना संबंध पूरी करो जी मेरा घर आओ सेवा प्रवान करो उन्हें चुका माफी बख्शो वेतर पूनम में बख्श करके प्रबंध लड़ी वार सियाज पाठ करने वास्ते आगा बख्शो रहते कार सवार के चरना धनवादी बनाओ शुद्ध के पितर सिंह लिया की बात कई प्यारे मेरे दिन मेरे आपका नाम जता नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा अज्ञा भई अकाल के तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो

मन का झूठा झूठ कमावे, माया नु फिरे तपा सदावे, परमे भूला सब तीर्थ गह, ओ तपा कैसे परम गत लह।

पाल लहन सहो अपना निज घर रहन करेन पौड़ी अंबर धरत बिछोड़ेन विच सच्चा असराऊ घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाऊ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाऊ सच्चा आप तख्त सच्चा

सबो रत है, रत बिन तन न होए। जो सहर ते अपने तिन तन लोभ रत न होए। पै पै तन खीन होए, लोभ रत विच हो जाए। ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का भाओ दुरमत मैल गवाए।

दुख सहाय नानक गुरमुख उभरे सच्चा शब्द समाहे पौड़ी आप अलिप्त सदा रह और तंदे सब ताव है आप निचल अचल है और आवह जावह सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निज घर वासा पाई है सच सिप्त समाव है सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई।

सो फल पाए सच। कथनी बदनी करता फिरै, हुक्म न बुझै बुझै सच। नानक हर का भाणा मन्ने, सो भगत होए विण मन्ने कच निकच। महला तीजा, मन मुख

जाइए। रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याई है, जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मिलाई है। घट अंतर अमृत रखे ओन गुरमुख किसै प्याई। श्लोक महला तीजा।

पढ़ हर का मंदिर शरीर अत सोहना हर हर नाम दिड़ मनमुख आप खुआयन माया मोह नित कड़ सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया ना सत पानी जंत फिर है ना सत मूंड मुड़ाई केसी ना सत पड़िया देश फिर है ना सत रुखी बिरखी पत्थर आप तछावे दुख सह ना सत हस्ती बद्दे संगल ना सत का गाई का हुचर है जिस हाथ सिद्ध देवे सो जे सोई जिस हाथ सिद्ध देवे जे सोई जिसनु दे तिस आए मिले नानक ताको मिले वडाई जिस घट भीतर सब दरवै।

मूर्ख का कहना, मूर्ख के क्या लक्षण है क्या मूर्ख का करना, मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाणे सदा दुख दुख ही मह रहना, अत प्यारा पवै खूहे केहो संजम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप तो रहना, हर नाम जपै आप उद्धरै उस पिछै डुबदे भी तरना, नानक जो तिस भावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला। नानक आखै री मना सुनिए सिख सही, लिखा रब मगेसिया बैठा कड वही, तलबा

काया हंस तुरमेल करतै लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावै गुण उच्चरै गुण माहे समाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। साधु

काम क्रोध दुए खेत लभ वत्र दरोग बियू हाली राहक खेत हाल विचार विकार मन हुक्मी खट्टे खाए नानक लिख है मंगे है औत जनेता जाए। महला पहला

बख्शीश बोहल दुनिया सगल दरोग नानक नजरी कर्म हुए जावे सगल बेजोग। पौड़ी मनमुख मोह गुबार है दूजे भाई बोले दूजे भाई सदा दुख है नित नीर विरोले गुरमुख नाम त्याइए मत तत कडोले अंतर परगास घट चानना हर लद्दा टोले आपे भरम भुलाए दा।

सुई धागा गंढै, माहो पख क्यों चलै नाही, घड़ी मोहत किच हंडै, सच पुराणा हुवै नाही, सीता कदे ना पाटै, नानक साहिब सचो सच्चा, तिचर जापी जापै। महला पहला। सच की काती सच संसार, घाड़त तिसकी अपर अपार, सब दे साण रखाई लाए, गुण की ठेकै विच समाए, तिस दा कुठा हुवै सेख, लोहू लब निकथा वेख, होए हलाल लगै हक जाए, नानक दर दीदार समाए।

मत सिरिया वै भार पौड़ी। सो सत संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच ते आयन से सच्चे जिन हार खर्च धन पल्ले। भगत सोहन गुण गावदे गुरमत अचल्लै।

खाना। सच कमाण सचो पाइय, कूड़ै कूड़ा माना। नानक तिनको सतगुर मिलया, जिना तुरे पया परवाना। महला पहला।

अवगुण मंजन गुण रवहै, मन सुख वसै आए पौड़ी। आपे आप वरतदा आपे ताड़ी लायन, आपे ही उपदेशदा गुरमुख पति आयन। एक आपे उजड़ पायन, एक भगती लायन, जिस आप बुझाए।

मिल पीवो भाई। कई बार मन विच आउंदा है कि बाणी नाल आंतरिक यात्रा करिए कि आज जो बारी साडा भेख है इस नाल जुड़िए। बड़ा वड्डा कंट्रास्ट सानू नजर आउंदा दोवां दे विच, पर जदों बाणी साडी साडी कपट खोल दी है, कपाट खोल दी है, कपट नहीं कपाट, उस वेले पता लगता है कि सारा एक कंटिन्यूटी दे विच है। गुरु नानक पातशाह तों लैके गुरु अंगद पातशाह फरमा रहे ने, गुरु अर्जन पातशाह फिर फरमाउणगे, गुरु रामदास पातशाह ते सवेरे ही लग जांदे ने आसा दी वार, हर अमृत पीने आसा दी वार विच असीं सारे गायन करदे आ। और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन गुरु गोबिंद सिंह दसम पातशाह तक आके हुंदी है। सो उस रंग तक पहुंचदिआं नित्रे ते केवल पांच ही सी ना, हजारां दे इकट्ठ दे विच्चों सारे नहीं सी आए, उस दे रंग विच रंगे होए। उस मंजिल तक पहुंचण दे लई सानू गुरु पातशाह फरमा रहे ने कौन, जिन्हां दे असीं पुरब मना रहे हां, जिहड़े गुरु नानक दे संग लग के उन्हां दे अंग लग के अंगद हो गए। लैणे तों अंगद तक दा सफर असीं सारिआं ने तय करना है, और किवें करना है, बाणी दीआं पैड़ां बाणी दे स्टेप्स दे उते चल के। नानक अमृत मने माहे बारी दी